अंतिम मंत्री लगायत ने मध्य रात में लेखे स्टाटस इसका कर विभिन्न प्रकार का क्रिया प्रतिक्रिया दुईजना व्यक्ति जस्ता देखिश एटा कोला क्षेत्र में उभर मोबाइल में थे

0: तीन लड़ाई लगी थी। तो राज सिंह तीन मात्रा खड़े करा हाथ तो चित्रे सभी थोड़ी तो मेरा खड़े और तीन लगा हाथ ज्यादा था तो तीन हाथ ज्यादा मेरे को तीन ने आगे लगा सकता छुटा छुटा
1: सात किलो नमक दिन हाथ सात भाग दिया।

और सभा जानकार के अनुसार ट्रैक्टर प्रोजेक्ट अभाव के कारण विगत गणना आलोचना समय में संपन्न हो न सके उल्लेख करते निर्देशक शर्मा ने पछिल्लो वर्ष में बजेट प्राप्त हुई बताने और बजेट के कारण काम नउठी अन्य समस्या नए निर्धारित समय में आयोजना संपन्न होने दुईदि तीन वर्ष भित्र आयोजना सकने लक्ष्य अनुसार बजेट विनियोजन कर समेत वहां स्पष्ट पार्थ स्थानीय तथा करीब 36,000 हेक्टर जमीन में सिंचाई सुविधा पुर्वने सहित निर्माणाधीन इस आयोजना को भौतिक प्रगति आयोजन 81% वित्तीय प्रगति 65% पुगे सूचना अधिकारी शेखर नाथ नेपाली बताने आयोजना अंतर्गत निर्माण पड़ने 77 किलोमीटर मूल्य मध्य 71 किलोमीटर निर्माण संपन्न 37 किलोमीटर शाखा तथा प्रशाखा नहर निर्माण भईसकेका छन्। पूर्वतर्फ का नहर निर्माण सकिएको छ भने पश्चिमतर्फको काम जारी रहेको छ। सिंचाई क्षेत्र संरक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत बकै नदीमा

0: that's from the fact that if anybody is to bear a man, then I believe that something has to say for physical work, and I think that's a right and most of an answer. Work and a sense, and I agree with us on my stuff, and I'm sorry that I'm not.
1: मेरे उपकार का इतना कुछ करेगा स्वस्थ करके मध्य द्वारा जनहित में जाने का दिन
2: नमस्कार मेरा नाम रत्नलाल चौधरी राष्ट्रीय नगर पालिका वडा संस्था उपवर्ती जयंती उद्योग भारतीय स्नातक सबई किस्म का औषधि हम पर्वती जयंती उद्योग सबै ठाउँमा

अपना 3 लाख रुपया ऋण ले रहा थी, 3 लाख रुपया चेता कैसे जमा की, फिर लेकर कई प्रतिशत ब्याज दिया पड़ा था अपना था जमा, वह उससे अपना सामो ब्याज लेकर 3 लाख रुपया

संचालन को ध्यान में रखो। बात जमीन में अगर सरकार और महाराष्ट्र का कांग्रेस

0: अच्छा सारा छ बजे खमार सन्देश में अपना वाला स्वागत बाधित हमारे संदेश पढ़ दिया का साथी एफएम राजापुर पार्टी का रेडियो प्रतिबोध एफएम गोरखपुर रेडियो भारती माधव जानकी गांव पालिका पार्टी में संयुक्त समूह प्रसारण प्रतिभा हमारे संदेश का गुरी डाली मुख्य मुख्य समाचार प्रशील शर्मा से पढ़ दिया चौवालीस लाख चालक मोबाइल सम्मान भ्रमण पेजन पत्र पांच वर्ष में से और पत्र के वाक छह नगर अस्पताल 40% में सीमित प्रगति प्राकृतिक संपदा उद्धार संस्कृति संगम बंटी बर्दिया होमस्टेट पर्यटक आकर्षण लेखित वृद्धि लुम्बिनी प्रदेश के वन्य नवनियुक्त पांच मंत्री का शपथ ग्रहण व प्रतिनिधि सभा कार्यक्रम का लागू स्थगित पूरा समाचार बर्दिया गरीब का परिमाण में अनुसार छी का सामान बरामद करता अनुसार छी का घर भारत में से जानते लग चौवालीस लाख चौवालीस हजार दुई सौ साठी रूपया बराबर का अवैध सामान प्रहरी बरामद करना को जिला प्रहरी कार्य का प्रहरी परिचित तथा सूचना अधिकारी रेशम पोहरा के अनुसार आज बिहान पांच बजे लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्य तुलसीपुर टांग मसी साधा प्रसाद में खटक करी जिला प्रहरी कार्य बढ़ गया वो इलाका प्रहरी कार्य टोहरी मसी खटक समेत टटोरी मधुबन नगर पालिका वार्ड नंबर आठ शाम श्री बाजार स्थित सड़क में से अवैध सामान नियंत्रण में रखो प्रहरी ए एक छ पैंतीस अस्सी नंबर अशोक लैंड पिकअप वैन ए एक छ एकानब्बे उनसाठी नंबर का बोलेरो पिकअप वैन हो ए बारह प उन्नाव सौ इक्कीस नंबर का पल्सर मोटरसाइकिल भारत में से प्रशासन बयान कच्चा ग्यारह एक सौ अस्सी एक सौ आठ बोरा अर्थात तीन हजार सात सौ नब्बे दर्जन अंदाजी मूल्य पच्चीस लाख उनसाठी हजार रूपया बराबर का सामान बरामद करना उपाय संलग्न भारत बहराइच जिला आमा पर्दिया फगलपुर का बीस वर्षीय कवीन खान को बाईस वर्षीय रिजुमान अंसारी खाना प्रभारी नियंत्रण में रहता उसने कहा मधुबन नगर पालिका वार्ड नंबर छह स्थित दुई पक्की गोदाम घर तरफ तथा वह ठाव अलग पूरा घर तरफ टल्ला का सटर न कोठामा खंडराशि कर वेतन सात सही कई कर मुखा कटाई की गर्मी किराना सामग्री समेत बरामद कई के बाद उस सामान का अनुमानित मूल्य अठारह लाख पचास हजार बीस साठी रूपया हलवा बरामद कई की गत ग्यारह थुमारी में पड़े बिना तीन ठो सवारी साधन तथा निर्मित किराना सामान सहित कुल चौवालीस लाख चौवालीस हजार दुई सौ साठी रूपया बराबर का अवैध सामान आवश्यक कार्रवाई कर राजापुर भंसार कार्य गुरिया प्रक्रिया में पठाई पढ़ाई चलाई तथा बर्दिया का गेरुआ गांव पालिका छ में निर्माणाधीन दस जिला का नगर अस्पताल पांच वर्ष से अपत्र रहता निर्माण कंपनी का ढिला सुस्ती का कारण दुई हजार उनासी असार भीतर संपन्न करना लक्ष्य रहकर अस्पताल हालसम चालीस प्रतिशत भौतिक प्रगति में से बिक्री रखो पांच करोड़ चौबीस लाख सत्तरी हजार रूपया लागत में निर्माण होना अस्पताल अध्यक्ष गौरा नेपाल मेगा वीरेन्द्र अमर जेपी दुई हजार अठहत्तर जेठ महेन्द्र गांवपालिका का प्रमुख प्रशासक अधिकृत पशुहादुर राणा के अनुसार निर्माण कंपनी में काम का प्रगति अनुसार भुगतान घोषणा करवा बजेट अभाव का कारण काम नहीं उपलब्ध हो वहां का अनुसार शुरू में चर्चा प्राप्ति संबंधी समस्या खुल सके अब अवरोध हो ठेकेदार भुगतानी लेहल पाँच कामों में चाँस नहीं दे तर तथा पाचक समय संपर्क विहीन जस्त पर्वा कम पालिका भ्यार भ्यार काम पिप्र बनाए लिखित अर्जी करते चढ़े खेलवा सूचना अधिकारी नारायण चौधरी का अनुसार निर्मेरक चरण में म्याद थप प्रति अलग में हाल थप प्रेरक म्याद महीना घंटसम करवा निर्माण स्थल का साइट इंचार्ज भूमिराज किमले पाचक दुई महीना से निर्माण कार्य पूर्ण रूप में ठप पर्ण जानकारी अस्पताल का लाख निर्माण महीना दुई परत मध्य प्रगत प्रधान निर्वाचन से और प्रगत अधिकांश काम आधीन बाकी रहता गांव पालिका का अध्यक्ष समान सिंह केसी और स्थानीय तह में आधार अस्पताल सञ्चालनमा आवश्यक व्यक्ति मनोफल किराई फिर्तापट्टि आवश्यक प्रगति निकै कानूनी कार्यवाही प्रक्रिया आएको परेन। चेतावनीहरूबाट महानिर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि नारायण छेत्री आवश्यक निर्माण सामग्री सहितमा पुग्नको दुई तिन पिठामा काम पुनः शुरू बिना दाबी कति थपेर व्यापार निर्माण सम्पन्न गर्न प्रतिबद्धता समेतबाट अस्पताल निर्माण सम्पन्न केरुवा गाउँपालिकाका स्थानीयवासी आदिन प्रसादको आज पूर्णगढ अस्पताल अथवा प्रति अस्पताल गुरियामा चढाइ पर्न पार्टीहरूमा जिल्ला टिकट क्षेत्र मान्छे नै केरुवामा स्वास्थ्य सेवा विस्तार अध्यक्षले प्रभावित गर्दा गर्दिया जिल्ला प्राकृतिक सौन्दर्य जैविक विविधता र समृद्धि थारू संस्कृतिको अनुपम संगमको रूपमा पैसित पण्डिसाइडेन यहाँ सञ्चालनमा रहेक सामुदायिक तथा निजी होमस्टे आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको प्रमुख आकर्षणको केन्द्र बन्न लागेल। प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाले सम्पन्न गर्दियामा होइन पर्यटक दोकान होमस्टेका स्थानीय जीवनशैली परम्परागत खानपान सांस्कृतिक प्रस्तुति हो। आत्मीय आतिथ्यताका अनुभव परिच्यालमा गोबर शेर्पा सरपरस होमस्टे पर्यटन प्रति पर्यटकका आकर्षण उल्लेखनीय रूपमा प्रतिक्रिया जिल्लामा हरजनक नगर गोविन्दपुर कोपेला ठाकुर बाबा मध्यवर्ती दल्ला जैविक मार्ग रमतपुर सतखरुवा ताल सोनारा हो लक्ष्मणपुर कैखा नौ सामुदायिक होमस्टे सञ्चालन मलबाट आकर्षण र निजी होमस्टेका संख्याको निरन्तर घटनाक्रम रहँदा होमस्टे सञ्चालक तिलकराम थारूको अनुसार होमस्टे पर्यटनले गाउँमा रोजगारी सिर्जना गर्नको सँग स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण हो। थारू सांस्कृतिक संरक्षणमा महत्वपूर्ण योगदान पुगेको प्रतिबद्धबाट गर्दियाको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यमा गर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज कृष्ण सहर संरक्षण क्षेत्र कर्णालीपुर केरुवा इन्टेक पढिया तर्वा सतखुर्वा तर्वा हो धामहरूबाट विशेष गरी नेपालका सबसे लम्बा पुलको रूपमा चिन्छैन कर्णाली पूर्व पर्यटन अवलोकनद्वारा प्रसिद्ध भारतीय राष्ट्रिय निकुञ्ज पर्यटक कर्जायमा पर्न गर्दा पर्यटन व्यवसाय से सम्बन्धित स्रोतका अनुसार प्रक्रियामा होइन पर्यटक मध्ये करिब 90% स्वदेशी हो। 10% विदेशी पर्यटकहरूबाट प्राकृतिक सौन्दर्य संस्थाहरू समुदायका मौलिक सांस्कृतिक पर्यटकका आकर्षणका मुख्य आधार बनाउँदा थार समुदायका मुखौटा लट्ठी छुङ्गा कुटुङ्गा उत्सखिया नाच जसिन सांस्कृतिक प्रस्तुति होमस्टेमा अहिले पर्यटकको लागि विशेष आकर्षण बन्न लाग्दा होमस्टे सञ्चालक गोविन्द थारू रेणुका थारूको अनुसार असीम कार्यक्रमले पर्यटक भूकन स्थानीय जीवनशैलीसित करिना प्रसङ्ग नव पुस्तामा सांस्कृतिक हस्तान्तरण गर्न माध्यमको रूपमा फेरि काम गर्दा गर्दिय राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आसपासका सामुदायिक वनवा क्षेत्रमा पूर्ण पार्टी रूपमा एकसिङ्गे खैर चन्दली भट्या चितुवा डल्फिन कृष्ण सानो चित्र लगायतका पनि जन्तु अवलोकनका विविधता प्राकृतिक वातावरण जीवन विविधता जैविक विविधता र सांस्कृतिक सम्पदाको संयोजनले गर्दियामा विशिष्ट पर्यटन गन्तव्यको रूपमा स्थापित गर्दा होमस्टे सञ्चालक तथा होमस्टे महासंघका केन्द्रीय सदस्य राजकुमार चौधरी अनुसार होमस्टेले व्यवसायिक पर्यटन कम्पन राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चिन्हिन महत्वपूर्ण भूमिका खेलतिरद्वारा गर्दियामा अन्नको भण्डार गृहनी हो। उर्वर भूमि पर्याप्त सिंचाई सुविधा हो। मेहनती किसानको कारण यहाँ वर्षभर खेतीबारी हरियाली अथवा बेला गर्दियाको आज पुनर्पालिकामा चार ओभर हरियाली छाएका कहरो चैत्य धानका बाल सुनलबाट कहुरे मकै पक्ना चरणमा पुगेका औरौभर किसानको वर्षाको धान लगाइन तयारीमा जुटलबाट कसे त्यो किसान धान बिहा धन्दामा व्यस्तबाट यहाँ कृषि कर्म निरन्तर संघर्ष सफलता हासिल गर्न किसान मध्ये एक मिटर ताजा महानगरपालिका साथ भीमापुरका तपाईँ थारू मुक्त कमैयाको जीवनमा से उठेर उहाँ आज व्यवसायिक कृषिमा आफ्नो क्षेत्र पहिचान बनाए सफल विभाग सुनि उहाँको सफलताको कथा सँगै हेर्नुहोस्। थारू से
1: गर्दिया राज्यको नगरपालिका साथ भीमापुरकी किसान पहाडी थारू अचानक धान रोपाईमा व्यस्त रहेका थिए। एकछिन उहाँ खेतमा चाहिँ त्यो धानकै बाला लहर लहर झुटिरहेका कारणले दोस्रो दिन बर्खे सिजनकै धान लगाइने तयारीमा झुटिरहेका थिए।

விட்டேன். தரா எதப்போ சீக்கிரமா உனக்கின் ஸ்தபம் திசை கிருப்பமா நினைச்சு தமிழ்ஹி மக்கள் தமிழக ஜீவன் சே சந்திர சட்டத்தில் மகா खेती करने का एक अवसर के संग संगे चुनौती के हो मौसम की अनिश्चितता हवा होरी खड़ेरी बाढ़ी तथा रोग कीड़ा के जोखिम में उत्पादन में असर पारत जैसे वहाँ मौसम संबंधी जानकारी के कत्ती को महत्व धरते जाते हैं।

0: किताब तेरे पहाड़ी थारुसल अमिंदर किसान के पर्चे पत्रना हो किसान के लाभ आवश्यक सिंचाई सुविधा सभी नौमाधियों की उपलब्धता हो उत्पादित कृषि उपज के उचित मूल्य सुनिश्चित करना राज्य से प्राप्त पड़ने हुए गुना
1: Thank you.

0: विगत ढेर दशक से 22 बीघा जमीन धारण लगाई खेती करते हैं पहाड़ी थारू अपनी इस क्षेत्र के 17% के रूप में पूरी जीत बाटे कृषि के पेशा केन्द्र की भविष्य निर्माण के आधार बनाई पहाड़ी थारू की कथा आत्मनिर्भरता के प्रेरणादायी उदाहरण बनल बास्तरी पर दिया
1: रुग्णी प्रदेश सरकार का मंत्री परिषद पुनर्गठन संगयुक्त 5 जना मंत्री पद तथा गोपनीयता को शपथ ग्रहण कर प्रदेश प्रमुख कृष्ण बहादुर खड़की मगर 5 नवनियुक्त मंत्रीगण पद तथा गोपनीयता में शपथ करेगा। मुख्यमंत्री चेत नारायण आचार्य का सिफारिश में नेपाल को संविधान का धारा 168 को पठाकर 9 प्रमुख मंत्री परिषद पुनर्गठन कैला पुनर्गठित मंत्री परिषद में हिमालय से 7 जना को जनता समाजवादी पार्टी में 1 जना गई 5 जना लघु मंत्री नियुक्त नियुक्त मंत्री में तुलसी प्रसाद चौधरी दिल्ली राज प्रसाद रामजी प्रसाद घिमिरे रत्न बहादुर खत्री व भंडारी लाल अहिरवन तुलसी प्रसाद चौधरी हना कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मंत्रालय दिल्ली राज प्रसाद हना ऊर्जा जल स्रोत तथा सिंचाई मंत्रालय रामजी प्रसाद घिमिरे हना स्वास्थ्य मंत्रालय रत्न बहादुर खत्री हना भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्रालय तथा भंडारी लाल अहिरवन आंतरिक मामला तथा कानून मंत्रालय का जिम्मेवारी के लिए शपथ ग्रहण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री चेत नारायण आचार्य पूर्व मुख्यमंत्री जो बहादुर महरा सभामुख तुलाराम खड़की मगर उपसभामुख मेनका खाण केसी लगायत का उपस्थित रंगदान से संघीय ओम प्रकाश गुप्ता खबर पटेल आप राष्ट्रीय समाचार को पारे वो प्रतिनिधि सभा का चढ़ाई आज सभा समाधि स्थगित हुआ आज सभा 1:15 को लागि स्थगित हुँदासम्म सूचना खास गरी स्थगित हुन जानकारी गराएको प्रधानमन्त्री पारेन शाह कुछ दिन पहिले संसदमा से नेपालले भारतका भूमि प्रबलत व्यक्ति दलसँग विपक्ष प्रत्यारबाट विपक्षी दल प्रधानमन्त्री आफ्नो हाई संसदमा सोचाइ पर्न आराम धन्यवाद राष्ट्रीय समाचार संग हमार संदेश का समय उड़ाई लगता हमार संदेश उड़ाइना से पहला मुख्य मुख्य संदेश परिणाम अनुसार छड़ी का समान बरामद करूंगा तो प्रतिनिधि सभा का चढ़ाई लगकर समाप्त स्थगित होगा। अब हमार संदेश बजे नेपाली भाषा हमारा सन्देश खरीद बाटे तब समाचार समाचार कक्ष का सब कुछ प्राप्त सुंदरिया गौरी शंकर कैमरा में अनुस मैं हूं कुमार के विदाई टू रेडियो प्रभाव रेडियो सुनते रहिए जय प्रभा।

करवा चाहिए पहले और व्यवस्था को रिसाइकल हरियाली संरक्षण का पार्श्व प्रसार जैसे भी स्टेशन हमारे

सबसे भारी मूल्य वाहन को असली खुले को निष्कर्ष से निकालने को साथ समिति प्रधानमंत्री सुरक्षा विधायक के प्रतिवेदन में गुरुंग डरमा भाई को पुनरुपी तलाश होंगे सौती चांदी पैतृक संपत्ति भाई को उल्लेख कर समिति के अनुसार संपत्ति विवरण में देखाइएगा सभी जगह गुरुंग नाम में नदी अधिकांश बुआ और हजुरबुआ को नाम रहकर पाइक धनकोटाई उन्नीस रूपये पन्द्रह जगह मत वहां को नाम में भेटी चितवन का दुर्घटना जगह परिवार को नाम में रहकर उल्लेख शेयर खरीद

प्रभावित हुआ गुस्सा। दक्षिणी फिलीपींस का आज दोपहर को यह गुस्सा 10.8 मैग्नीट्यूड के भूकंप में पड़ी। 24 तरह दीपक रहने का संघ ने 134 तरह भंडार बड़ी घाई के भाई को बीबीसी ने जगाया। इसके 2000 भंडार

0: चाहिए थे। साठ साल में जाना की तरह की गोरा तीन बातें सुखने में कितनी बातें हमने ये जाना की अब जोतन के अनुसार से अब काट कर पटे हुए बैठक के अनुसार से
1: हमारे
0: दिया हो ये सुखिया हमारी हो ये टुकड़ा हो ये हरकलिया हो ये अलग चला जाता है ये सब रोटी रोटी देना मुस्कत ये हमने अगर जो रोटियाँ आप लोग पका के रख लो तो वो दस तक टस रही नई डिग्री गुजरे गुजर रही सागर तो वो दस के टस पर हो रही ये लटन के पानी नहीं पीना
1: सब
0: ये बात ये है छाला से मेरे के पास जाना।

हमलों के घर कुड़िया शहर में ही कहीं हुए जब हो जाती है करना और अब करना के लिए तो हमें सब हमारे आगे हवा सब हमारे देखें तो कई चीज होंगी।

हमारी फुलवारी फुलवारी जंगल सफा सफार हमारे से गांव की निगरान छोटा छोटा उन्हें छोड़ दी तो वैसे और

0: ये हमें मन से अब जैसे समय की चलो दो जब यहाँ वहाँ बहुत लेकिन
1: Thank you.

0: गई और मां गया बोली साग सब्जी फल फूल सही कर कर पूरा खाना ले बच्चा हम तंदुरुस्त बने पूरा खाना से समझ भी बड़ा समा इस पान जा रही
1: स्वास्थ्य कार्यालय पर व्यक्ति चौबीस

साथ साथ समय तो है ना राष्ट्रपति नेता बिपिन आचार्य आज तो बैठक के संवाद नेता

0: विपक्षी रूस ने निरंतर संवाद करने बताए।
1: अभी जहाँ भाई कहीं साहस होने